0: अरे नहीं मम्मा, वो लीक हो जाएगा, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे।
1: अरे लेके जा, रणदीप को बहुत पसंद है, ऐसे बोलोगे तो लेके जाना।
0: बाय बाय।
1: अभी तुझे याद कर रही थी, मेरी फैमिली वाली गोभी की सब्जी बना रही।
0: अच्छा सुनो,